0: हरेक हप्ता शनिबार बिहान सभा 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुने यो कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिनुभएका, शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो उदार समय खर्च दिनुभएका स्रष्टाहरूलाई आमन्त्रण गरी, चाहे त्यो भर्चुअल रूपमा होस् चाहे त्यो फिजिकल रूपमा होस्, उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरी हामीले उहाँका अनुभव र अनुभूतिलाई पस्कने प्रयास गर्दछौ। यसै क्रममा आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ भोजराज दाहाल, संस्थापक प्रिन्सिपल सिद्धार्थ अवसी मारी कावसती नवलपुर। आजका हाम्रा अतिथिलाई सर्वप्रथम भर्चुअल रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार।
1: नमस्कार विश्वजी,
0: पश्चिमको आवाज रेडियो सञ्चालनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर।
1: धन्यवाद सर। तपाईँ चितवनमा रेडियो सञ्चालन गरेर त्यो शिक्षा सरकारको कार्यक्रममा हामीलाई खोजी खोजी जोड्नु भएकोमा व्यक्तिगत ढंगले तपाईँ र तपाईँको संचार संस्था रेडियो साइनप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार।
0: यो शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रमा सरको चाम सिकी च्वाइस हो बताउन हार्दिक अनुरोध गरेछ।
1: त्यस्तो छ, अब यो शिक्षा चान्स च्वाइस, पहिला कुरा त यो च्वाइस नभई पहिला त चान्स पनि हो च्वाइस पनि हो। अब तपाईँको क्वेसन प्रति चाहिँ म कसरी उत्तर दिउँ होइन, अब हामीले पहिला कुरा त के रहेछ भने शिक्षा भनेको मानव जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा माध्यम हो। जीवन रूपान्तरण गर्न शिक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण पन्छ र रहन्छ नै होइन। त्यो भएको हुँदाखेरिमा शिक्षा माध्यमबाट म अरू शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू अरूलाई रूपान्तरित गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरिमा चाहेर वा नचाहेर शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू आफू पनि रूपान्तरित हुन जरुरी छ होइन। त्यो भएर यो चाहिँ मेरो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र हो होइन, र यसलाई मैले के भने अब काम गर्दै जाँदाखेरिमा यसको माध्यमबाट मैले आफूलाई पनि रूपान्तरित गर्ने मौका पाएको छु। मेरो मान शान पहिचान सबै क्षेत्रबाट बनेको हुँदाखेरिमा यसलाई मैले चान्स या अवसरको रूपमा सदुपयोग गरेको छु। त्यो पनि चोइस पनि हो चान्स पनि हो म गर्व
0: अब यो शिक्षा क्षेत्रमा सर आफूले अध्यापन गराउनु भएको पहिलो विद्यालय कुन होला र कति सालमा सुरु गर्नुभयो मेरो जिज्ञासा?
1: त्यस्तो छ, अब यो के भने मैले शिक्षा क्षेत्र कुरा गर्दा म 2022 सालको मेरो जन्म हो खास गरिकन है। म 40 सालमा म शिक्षकको रूपमा कहीँ एउटा प्राइभेट संस्थामा चाहिँ म थोरै समय आबद्ध भएँ
0: है।
1: त्यसपछि 45-46 सालमा पोखरामा पनि म शिक्षा क्षेत्रमा प्राइभेट स्कूलमै म शिक्षणको शिक्षकको रूपमा शिक्षण पेसामा आबद्ध भएँ। त्यसपछि मैले 2046 सालमा अनि यो कावासुती नवलपुरको कावासुती भन्ने क्षेत्रमा म आफैले एउटा संस्थापक बनेर एउटा प्रिन्सिपल पनि बनेर संस्थापक प्रिन्सिपलको उपाधिसहित मैले विद्यालय सञ्चालन गरेँ। र अहिले लगभग अब 46 सालबाट यहाँ आउँदाखेरिमा करिब करिब अब 36-37 वर्षका उमेरहरू अवधिहरू समयावधिहरू व्यतीत गरेका छौँ। निरन्तर ढङ्गले चाहिँ लागिरहेका छौँ। विद्यालय मैले यहाँ नवलपुरकै अरुण खोलामा नारायणी आवासीय विद्यालय थियो त्यति बेला त्यहाँ अध्यापन गराएँ। पोखरामा मैले डायमन्ड स्कुल अहिले पनि कालचोक भन्ने ठाउँमा छ त्यहाँ पनि मैले अध्यापन गरेँ। र त्यसपछि मैले यो विद्यालय आफैले सुरु गरेँ 2046 सालमा। म संस्थापक प्रिन्सिपलको रूपमा अहिलेसम्म पनि अध्यापक रहिरहेको छु।
0: मैले मेरो जिज्ञासा हिजो आफू सक्रिय शिक्षक भएर काम गर्दाको परिस्थिति परियो र आफू नै फाउन्डर प्रिन्सिपल भएर विद्यालय सञ्चालन गर्दाखेरिको अन्तर के रह्यो होला मेरो जिज्ञासा?
1: अब विशेषिक कुरा के हो भनेदेखि शिक्षक र फाउन्डर भनेका कुराहरू नि के भने यो अब मुलुकमा 2046 सालपछि जुन मुलुकमा एउटा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बौद्धिक व्यवस्थाको चाहिँ पुनर्स्थापित भन्नुपर्छ पुनर्स्थापन बन्यो नि जन आन्दोलनको माध्यमबाट। अब हुन त्यहाँको स्थापना र त्यो अवधि थोरै अन्तर हामी अगाडि हामी जेको बौद्धिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुनुभन्दा चैतको अथवा 47 आन्दोलनले चैतको अन्तिमतिर 27 गते बौद्धिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो। हामीले त त्यो पुस्ने विद्यालय सुरु गरिसकेका थियौँ हामी देख्यौँ। फेरि पनि के हो भने शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरिमा निजीकरण, खुला अर्थतन्त्र, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेको संख्या अलिक बढी बन्यो। र मेरो कुरा गर्दा त के भने शिक्षक र संस्थापक दोहोरो दायित्व रहन्छ नै। र संस्थापक स्वयंले शिक्षण गर्दाखेरि के रहन्छ भनेदेखि खेलाडीले अलिकति मोर एकाउन्टेबल होइन, बढी जवाब होइन, बढी जवाबदेता बढ्ता जिम्मेवारी बोध रहने हुन्छ। त्यहाँ दुईटा कुरा, एकातिर आफ्नो लगानीका कुरा पनि बने, आफू विकल्परहित ढङ्गबाट एउटा संस्थापक भइ के रहेछ भने विकल्परहित ढङ्गबाट शिक्षक बन्नुपर्दो रहेछ। एउटा शिक्षकका उसका हजारौँ विद्यालयहरू, लाखौँ विद्यालयहरू, वैकल्पिक विद्यालय बन्न सक्छन्, होइन एउटा संस्थापकको चाहिँ एउटै मात्रै विद्यालय हुँदो रहेछ।
2: हामीले प्राय एउटा कुरा अनुभव गरेका हुन्छौँ, कुनै व्यक्तिसँग भेट्दा मन एकदम धेरै हलुको हुन्छ भने कसैको प्रेजेन्सले कन्फिडेन्स बढाउँछ, अनि कहिले काहीँ कुनै स्पष्ट कारण पनि नहुँदा मन भारी भएको महसुस हुन्छ। कतिपयले यसलाई अरा भन्छन्, कतिपयले एनर्जी, र कतिपयले केवल हाम्रो मानसिक र भावनात्मक अवस्थासँग जोडेर हेर्छन्। तर यही प्रश्नबाट एउटा गहिरो प्रश्न सुरु हुन्छ, हाम्रो सोच र भावनाले हाम्रो ऊर्जा बदल्छ कि हाम्रो ऊर्जाले हाम्रो सोच बदल्छ? डर, ईर्ष्या, क्रोध र इनसिक्योरिटीले हामीलाई कति कमजोर बनाउन सक्छ? अनि जीवनमा केही नकारात्मक कुरा भइरहेको महसुस हुँदा त्यसलाई तुरन्तै नेगेटिभ एनर्जी वा ब्ल्याक म्याजिक भन्ने बुझ्नु कतिको उचित छ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मानिसलाई अरूको नकारात्मकताले कमजोर बनाउँछ कि त्यसप्रतिको आफ्नै डरले? आज हामी अरा, नेगेटिभ एनर्जी, ब्ल्याक म्याजिक, कर्म, मेडिटेशन र इनर स्ट्रेन्थ का यिनै गहिरा पक्षहरूलाई डर वा अन्धविश्वासबाट होइन, जागरूकता र आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट बुझ्ने प्रयास गर्छौं। र यो संवादका लागि आज फेरि हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जीव मलिक सर। एउटा सरल तथा गहिरो प्रश्नबाट शुरू गरौं कि हाम्रो अरा, हाम्रो सोच, भावना र जीवनशैलीबाट प्रभावित हुन सक्छ? थ्याङ्क यू सो मच सर, हजुरले फेरि पनि सोनामाते शोमा पडकास्ट गर्नको लागि वान मोर अपर्च्युनिटी दिस्यो। थ्याङ्क यू सो भेरी मच सर, हामीले
3: धन्यवाद।
2: आई वुड वन्ट टु वेलकम यु सर, एकदम म एकदम धेरै भाग्यमानी मान्छे होला कि दिस इज माई थर्ड पडकास्ट विथ यु। फर्स्ट हामीले 2026 प्रडिक्सन गरेका थियौँ, जुन प्रडिक्सन हजुरले त्यो बेला भन्सेको प्रडिक्सन आज सरले त यो भन्सा थियो भनेर एभ्री टाइम आई रिकल इट। त्यसपछि हामीले चक्रजहरूको गऱ्यौँ, आज चाहिँ सर अब अहिले एकदम धेरै कुराहरू सुनिन्छ, आत्मा सोल भनेर भन्छ, हरर मुभी पनि हेर्दा थिएँ, आत्माहरू एकदम धेरै डरलाग्दो हुन्छ नि सर। आत्मा चाहिँ के हो सर, वाट इज सोल एक्चुली सर?
3: देखिए सोल को हम लोग जो डिफाइन करते हैं, अगर हम अपनी पूरी आइडेंटिटी को, अगर मैं शरीर के बिना अगर मेरा कोई एग्जिस्टेंस है जो सोच सकता है, जो फील कर सकता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, इनविजिबल है, शरीर के चले जाने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद भी जो हमारी आइडेंटिटी बचती है उसको हम सोल मानते हैं, है ना, उसी को हम आमतौर पे सोल कहते हैं। वो फोर्स जो हमारे शरीर को चला रही है वो सोल है।
2: सो आफ्टर डेथ जुन हाम्रो शरीरबाट छोडेर गइसकेको तत्व आत्मा, त्यो चाहिँ किन यस्तो डरलाग्दो हुन्छ कि हा हा हा हा यस्तो आएर कपाल सपाल यस्तो, त्यस्तो चाहिँ किन त्यो त्यो मुभीमा मात्र देखिन्छ कि सर एक्चुली त्यस्तै हुन्छ?
3: नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सारी आत्माएं डरावनी नहीं होती। पहली बात तो समझे, आज हम अच्छे खासे जीते जागते इंसान हैं, क्या मरने के बाद मैं एकदम से डरावना थोड़ी हो जाऊंगा? नहीं ना, नॉर्मली शरीर ही तो छूट रहा है। मृत्यु क्या है, डेथ क्या है? डेथ का मतलब ये जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये शरीर जैसे ही मृत्यु हुई, डेथ हुआ, तो ये बॉडी अलग हो गया और जो सोल है वो अलग हो गया, और अलग होते ही वो कोई डरावनी नहीं हो जाएगी, वो हा हा नहीं करेगी, है ना। तो वो बॉडी अलग हुआ, सोल की अपनी टाइप होती है और मरने के बाद भी सोल लगभग वैसे ही रहती है जैसे जीवन में रही थी।
2: ओके।
3: और उसके आगे की एक गति होती है, आगे की एक यात्रा होती है। आइडली एज वी लर्न कि जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा 13 डेज तक यहाँ रहती है, 13 डेज की डेथ के बाद, जो 13 डेज के बाद वो आगे यमलोक में जाती है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट बर्थ उसका डिसाइड होता है, और फिर वो अगला जन्म लेती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। बट सम टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट बिकॉज ऑफ द हाई डिजायर्स, या तो उसकी सोल की कोई डिजायर इच्छा रह जाती है अधूरी, या उसका संसार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रह जाता है, किसी जगह से अटैचमेंट रह जाता है, या किसी इंसान के साथ कोई बदले का भाव रह जाता है। क्योंकि डेथ हर एक की नेचुरल हो जरूरी तो नहीं है ना, किसी ने किसी को गुस्से में नाराजगी में मार डाला, इसके मन में ये भाव रह गया कि मुझे बदला लेना है। अब इसकी जो सोल होगी वो डरावनी हो सकती है कुछ समय के बाद, क्योंकि भाव जैसा था अंतिम समय में जो भाव था उसके हिसाब से उस सोल का अगला स्टेप वैसा होता है। अब डेथ के बाद समझिए कि हमारा लॉजिकल माइंड नहीं रहता, देयर इज नो लॉजिकल माइंड। डेथ के बाद ओनली इमोशंस आर लेफ्ट आउट। ओके। नाउ अभी हो सकता है मेरे मन में किसी के प्रति गुस्से का भाव आता हो, तो मैं लॉजिकली अपने आप को समझा लेता हूं, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि समाज है, व्यवस्था है ना। लेकिन मृत्यु के बाद ये लॉजिकल माइंड शट डाउन हो जाएगा, कोई बुद्धि नहीं होगी, ओनली इमोशंस विल बी देयर, एंड दोज इमोशंस विच आर वेरी हैवी, अगर नफरत अंदर बहुत ज्यादा है तो ये आत्मा जो है मृत्यु के बाद ये अगली यात्रा पर नहीं जाएगी, बल्कि यहीं पर कुछ समय के लिए ठहर सकती है अपना गुस्सा निकालने के लिए, बदला लेने के लिए, कोई टास्क पूरा करने के लिए भी हो सकती है। कोई तो इसका मतलब ये है कि कोई काम अधूरा छूट गया, मान लो किसी पिता ने अपने बच्चों के नाम पर जायदाद लिखी, लेकिन वो प्रॉपर लास्ट में क्लियर करके नहीं कह के गया, या कोई जायदाद का प्रॉपर नॉमिनेशन नहीं कर पाया, हो सकता है उस काम के लिए रुक जाए, भाई मेरा पैसा मेरे छोटे बेटे को प्रॉपरली मिल जाए, मे बी फॉर सम टाइम दैट सोल मे स्टे हेयर, कुछ समय के लिए वो यहां रह सकती है, और दो चार महीने में अपना काम पूरा करके चली जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो ये है कि अगर किसी को आपने जबरदस्ती किसी की डेथ हुई है, मतलब अकाल मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, या कुछ अधूरी डिजायर छोड़ के वो चला गया, तो उसकी सोल बड़ी परेशान हो सकती है, और जो परेशानी हालत में जाता है वो फिर परेशान कर भी सकता है,
2: और उलाइफनी
3: राइट, दूसरों को वो परेशान कर सकता है, औरों के लिए भी वो गड़बड़ कर सकता है फिर वो।
2: ओके।
3: क्योंकि वो ऐसे सडनली किसी को तंग नहीं करेगा, बट दोज वर कनेक्टेड पीपल, सपोज किसी ने, मैंने नेपाल में बहुत सुना है कि ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं एक दूसरे को, सुना है मैंने, कुछ एरिया में का कुछ होता है ऐसा, भारत में भी बहुत होता है कुछ ब्लैक, मतलब आप किसी को किसी के प्रति कोई गुस्से का भाव हो सकता है, तो सीधा गुस्सा निकालने की बजाय लोग तंत्र वाला कोवर्ड वाला तरीका यूज करते हैं, डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं सकते, ये कोवर्ड तरीका है ना, कमजोर लोगों के दिमाग का तरीका है कि किसी इनडायरेक्ट तरीके से किसी तांत्रिक को पैसा खिलाकर उसके अगेंस्ट कुछ करवा दो।
2: त्यस्तो हुन्छ सर, जस्तो यहाँ सुनिन्छ धेरै कुराहरू, नेपाल र इन्डियामा मात्र होइन इभन अमेरिकामा पनि ब्ल्याक म्याजिक धेरै कुराहरू सुनिन्छ, यो कुराहरू गरिन्छ गर्छन् भनेर। अब म मेरै आफ्नै एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि पनि भुटु डल राखेको थियो मेरो अफिसको ढोकामा, त्यसपछि म आइएसु बी लाइक सडनली म बिरामी हुन्थे, अब मान्ने नमान्ने त्यो कुराहरू अलगै कुराहरू हो, त्यसको कुनै पनि लजिकल एक्सप्लेनेसन नै हुँदैन थियो मसँग पनि कहिले पनि। टेस्ट गराउन गए सधैँ पनि रिपोर्ट एकदम नर्मल आउने, तर अब चाहिँ ला अब त म मर्छु नै भन्ने खालको सिचुएसन हुन्थ्यो, मेरो अफिसको मान्छेहरू डराएर मेरो मम्मी ड्याडीलाई फोन पनि गर्थ्यो। यो साँच्चीकै तन्त्र हुन्छ सर, यो आत्माको यो फुलफिल गर्नको लागि, यो एक त माई क्वेसन इज हुन्छ कि हुँदैन सर, अर्को हुन्छ भने त्यसले त नराम्रो काम गर्यो भने त त्यसले त डेफिनेटली वे टकिङ अबाउट सोल आज भने त्यसले सोललाई त अफेक्ट गर्छ होला नि, के हुन्छ सर यसको इम्प्लिकेसन?
3: आपके पहले सवाल का जवाब यस हाँ है, तंत्र भी होता है। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, दूर दूर तक नहीं हूँ, पर क्योंकि मैं एक हीलर हूँ तो लोग अपनी बीमारी लेकर आते हैं तो मुझे पता लगाना पड़ता है कि क्या हुआ। हर मंत्र की एक पॉजिटिव शक्ति होती है, तो उसी का इंटेंशन, गलत इंटेंशन से डालकर भी किसी मंत्र को जपा जा सकता है, तो उसको तंत्र वे बोलते हैं। मतलब आपने इंटेंशन गलत डाला, इंटेंशन गलत डाला, आपके पास शक्ति है। लोगों को शक्ति का दुरुपयोग करना ज्यादा आता है, लॉजिकली है ना, लॉजिकल। कोई भी काम होगा उसका अच्छे वे में इस्तेमाल करने की बजाय उसका बुरा इस्तेमाल पहले चालू हो जाता है। तो ये ऐसा ही गलत जो तरीका है। हालांकि तंत्र अपने आप में कभी बुरा नहीं है, तंत्र का मतलब कुछ बुरा नहीं है बिल्कुल भी। तो लेकिन लोगों ने इस्तेमाल गलत तरीके से करना शुरू कर दिया इसका, कि किसी का नुकसान पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तो सामान्य मंत्रों का भी गलत उपयोग कर सकते हैं लोग, ऐसा इंटेंशन गलत डाल दिया। कोई व्यक्ति अगर आपसे डायरेक्टली कोई कंपटीशन नहीं कर पा रहा, कोई व्यक्ति कंपटीशन नहीं कर पा रहा, आइडियली यही होना चाहिए था कि अगर सोना जी को सच में आपसे कोई कंपटीशन करना चाहता है तो उसको कितना महान बनना पड़ेगा, जितना आपने अपने ऊपर काम किया होगा, जितना आपने हार्डवर्क किया होगा, इतना करने की हिम्मत किसी विरले में होगी, है ना। और क्योंकि हिम्मत नहीं होगी तो लोग क्या करते हैं, आप जैसा तो नहीं बन सकते, आपको तो गिरा सकते हैं। आपको गिराने के लिए फिर वो नेगेटिव शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट नहीं ले करते। अब इसके लिए कुछ तंत्र मंत्र करने वाले लोग अब बहुत एक्टिव हो चुके हैं, पहले भी थे, लेकिन कोरोना टाइम के बाद से लोगों ने और ज्यादा इस चीज का बड़ा है, हमने बहुत बड़ा हुआ देखा इस चीज को। तो लोग पैसा देते हैं किसी को और बोलते हैं कि इसको, इस व्यक्ति के ऊपर मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं वो कर दो, इसके ऊपर ऐसा कर दो, सीधे मत मारो लेकिन इसको सीधा इसको डाउन कर दो, इसका बिजनेस खराब कर दो, इसके बच्चे की पढ़ाई रुकवा दो, इसके शरीर में कोई बीमारी पैदा कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि ये कंफ्यूज रहे बुरी तरह से।
2: ये तो गलत हो नि सर, यो तो एकदमै गलत हो। अब जसरी मैले आफैले पनि भोगेका कुराहरू, राइट कुराहरू, लाइक मैले भोगेका कुराहरू मात्र भन्न सक्छु म। म आउँछु, ब्याग राख्छु, त्यसपछि मलाई केही पनि यादै हुँदैन, म यसरी पछाडिबाट आई वाज फलिङ ब्याकवर्ड। तर त्यो कसैले देखेर हो पछाडिबाट ढलिदियो मान्छे भने त मर्न पनि सक्थे त्यो बेलामा। यो कतिको राइट हो सर, यसको त कन्सिक्वेन्सेस, हामीले अस्ति कर्माको पनि कुरा गरेका थियौँ। आत्मालाई त डेफिनेटली त्योले त बिर्सिँदैन होला कहिले पनि, इभन जसले गरेको छ उसले पनि बिर्सिँदैन, जसलाई भइरहेको छ उसले पनि बिर्सिँदैन। सो यसको त केही त होला नि इम्प्लिकेसन, यो त एकदम गलत कुरा हो।
3: डेफिनेटली गलत है, यही तो बैड पार्ट है इसका। जो कर रहा है, आपने भी कहा ना, आपको पता नहीं लग रहा, शरीर निढाल हो जा रहा है, बिल्कुल गिर रहा है ऐसे। हमने भी देखा है लोगों को आते आते, इतने परेशान लोग, हालत में लोगों को देखा है। लोगों ने वार्निंग देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं, फ्राइडे नाइट को तुम्हें मैं ऐसा कर दूंगा, दे विल गिव ए चैलेंज टू समबडी हुम, जिसके ऊपर तंत्रा कर रहे हैं, उसको चैलेंज देते हैं कि आज एक सर्टन डे होगा, फ्राइडे को बोलेंगे तुम्हें मैं ऐसा ऐसा ऐसा कर दूंगा, तुम बचा सकते हो तो बचा लो। एंड दैट पावर एट सर्टेन टाइम पीरियड, जैसे बोला 8 PM पर ऐसा होगा, एंड दैट स्टार्ट्स हैपनिंग। जैसे अभी आपने बोला कि उसका पूरा बॉडी शेक करने लगेगा, एंड समथिंग विल हैपन, फिर उस पर्सन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, या कुछ और हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब सोचो, जिस जो व्यक्ति कर रहा है और जिसने वो करवाया है, जिसने उसके लिए इरादा डाला है, है ना, वो कितना खराब गंदा उसका दिमाग होगा जो ऐसा सोच रहा है कि इस व्यक्ति को मैं नुकसान पहुंचा दूं, इतना बुरा कर दूं। कितनी नफरत पाली होगी उसने, उसकी सोल कितनी डिग्रेड हुई होगी, कितना गिरा हुआ इंसान होगा वो जो ऐसा करेगा। और फिर जिसके थ्रू करवाया, वो करने वाला, उसने उसको पेशा बना लिया, मतलब उसने उसको प्रोफेशन बना लिया, थोड़ा सा पैसा लिया और कुछ भी कर दिया। अरे जब तुम्हारा हिसाब होगा, कार्मिक हिसाब होगा, तब तुम्हें किस प्रकार की सजाएं मिलेंगी, कैन यू थिंक अबाउट, सोचिए। क्योंकि जिन नेगेटिव शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम किसी दूसरे के दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो, वो नेगेटिव शक्तियां एक दिन तुम्हें ही खा जाएंगी। ये मेरी आंखों देखी, कानों सुनी हुई घटना है। एक होइन
2: सर, हजुरले एक्जाम्पल लाइक हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ यो टपिक आउँदाखेरि कि हजुरले त यस्तो एक्सपिरियन्स गर्छ होला, किनभने हजुरसँग मैले अस्ति लास्ट टाइमको वर्कसपमा हेर्दाखेरि मलाई एकदमै डर लाग्यो, सिरियसली एकदमै डर लागेको थियो. त्यो अगाडि पछाडिको त्यो एनर्जी समेत पनि कस्तो हेभी फिल भएको थियो. अब आई डोन्ट नो त्यो मलाई राइट फिल भयो रङ फिल भयो, डर पनि लाग्यो हो, के भएको हो सर, यो कसरी हुन्छ? हजुरले एक्जाम्पल हजुरको स्टोरिजहरू एक्सपिरियन्सहरू सुनाइदिनुहोस् न.
3: जो अभी हम बात कर रहे थे ना जिस टॉपिक पे कि जो व्यक्ति तंत्र क्रिया कर रहा है या करवा रहा है, दोनों की बात करते हैं, फिर इस पर आते हैं कि वो अनुभव क्या था. वो कुंडलिनी के कुछ पॉजिटिव अनुभव भी होते हैं, कुछ कुछ नेगेटिव भी होते हैं. वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है. तो जो पहले वाली बात है उसके लिए जो हमारे मेरा एक एग्जाम्पल है, एक इंसान ने मेरे को बताया ऐसा कि उसको मतलब वो उसके बारे में मैंने सुना था कि बहुत किसी के बारे में वो कुछ भी बोल देता था और वो सच होती थी उसकी बातें.
2: बोलो तो कालो जिब्रो
3: भन्छ, कालो जिब्रो वाली बात भी नहीं है. इट्स समथिंग लाइक जैसे किसी के बारे में कुछ बोल देता था, एक सिद्धि होती है कान में बोल जाती है वो, और वो कान में बोल जाती है और वो जो बताती है उसके बारे में, तो उसके बारे में वो कुछ भी बता सकता है कि आपका जन्म यहाँ हुआ था, आप ऐसे थे वो थे, आप ये प्रश्न लेकर आए हो, आपका ये है, ऐसे कुछ बातें वो बोल देता था.
2: ओके.
3: तो ये बात मुझे उसने बताई किसी ने, ये जो पर्सन था ऐसा करके. फिर कुछ टाइम के बाद वो ऐसा जब सबके बारे में बोल देता था, कुछ टाइम के बाद वो व्यक्ति जो ये करता था,
2: जो ले बोलता,
3: हाँ, जो ये बोलता था ऐसा करके, उसकी डेथ हुई. और डेथ बहुत ही बुरी अवस्था में थी, उसकी जो बॉडी थी किसी पेड़ से उल्टी लटकी हुई मिली, उल्टी पैरों के बल ऐसे लटकी हुई मिली उसकी बॉडी. बड़ी खराब हालत में मिली बहुत एकदम. जब उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या है, इसके साथ क्या हुआ, दैट्स द क्वेश्चन
2: एग्जैक्टली,
3: क्या हुआ इसके साथ कि ऐसे उल्टा लटका हुआ काफी. वो बाद में उसके बारे में गांव में चर्चा वर्चा फैली उनके, बाद में वो गुमनाम हो गया, मतलब बिल्कुल लोगों ने उसके बारे में बात ही करना, क्योंकि जो उसके बारे में सोचता या बात करता ना उसको भी कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती थी, तो लोगों ने वो उसके बारे में बहुत बात करना ही छोड़ दिया. बट मैंने जो पता लगाया, मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि ये क्या हुआ, गुरुदेव ने मुझे बताया कि इसने एक करण पिशाचिनी सिद्धि होती है, तो उसको साधा हुआ था, उसके कान में आकर सब बता जाती थी. लेकिन जैसे ही इसका सारा जीवन लोगों की वाहवाही लेता रहा, तंत्र करता रहा, ये करता, किसी के बारे में बता भी देता, कुछ करना होता, किसी का नुकसान करना होता नुकसान भी कर देता, किसी को बोलेगा तुम्हारे घर से, उसको बोल देता, मतलब तुम्हारे घर से पैसा उठा लिया, किसी का पैसा नुकसान करवा दिया, कुछ ये भी सिद्धि थी, कुछ और भी तंत्र करता था. अंत में जब वो मरा तो उन नेगेटिव शक्तियों ने उसके दिमाग पे कब्जा कर लिया और उसके पूरे उसके शरीर को ऐसा अंदर से उसकी सोल को साथ ले गए और पूरा अब कई जन्मों तक वो उनके साथ उनके दुख झेलेगा, पीड़ा झेलेगा, उनका गुलाम बन के रहेगा, जिनको उसने जीवन भर गुलाम बनाकर रखा. नेगेटिव शक्तियों की बात कर रहा हूं मैं.
2: ओहो, त्यसैलाई युज गरेर उसले सबै कामहरू गर्यो जहिलेसम्म उसको जिन्दगी थियो.
3: राइट.
2: जब उसको एन्डिङ टाइममा त्यही नेगेटिभ एनर्जीले पावर्सहरूले उसलाई नै आफ्नो वशमा गरेर त्यसपछि
3: उसको मारडाला एन्ड उसकी सोलको ले गए कन्ट्रोल गरे आर युजिङ.
2: यो कसैलाई थाहा छ भने त किन गर्छ त सर? लाइक हामी त जुन सनातन धर्म हामी जुन मान्छौँ, हामीले त अब पास्टलाई पुनर्जन्ममा त हामी जहिले पनि विश्वास गर्छौ नै, भने किन मान्छन् मान्छेहरूले, किन गर्छ सर यस्तो?
3: है हमारे ही सनातन में ही बात है ना कि अगर आप जिस व्यक्ति को सारा जीवन जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे वहीं तो पहुंचोगे ना. लॉजिकली इफ यू थिंक अबाउट गॉड फॉर होल ऑफ योर लाइफ, एट लास्ट यू विल मीट हिम ओनली, राइट? सिमिलरली दिस पर्सन वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दीज नेगेटिव पावर्स थ्रू आउट द लाइफ. एट द एंड ऑफ द लाइफ दीज पावर आर सो पावरफुल that they taken over him and उसको पकड़ के कंट्रोल करके, जैसे लोअर धरती से नीचे भी जो लोअर लोकाज हैं वहां ले जाते हैं, पाताल लोक हैं, असुर लोक है, नीचे भी लोग, तो वहां ले जाते हैं खींचकर, फिर उसको गुलाम बनाकर उसको अपने उसमें शामिल कर लेते हैं। वेरी वेरी पेनफुल। ये उन लोगों की मैंने दुर्गति बताई जो लोग आज बड़े बड़े तंत्र कंत्र करते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं, अंत में ये नेगेटिव शक्तियां उनको कंट्रोल करके उनको गुलाम बना के उनको इतना भी मारती हैं और तकलीफ देती हैं, वो सारी जिंदगी उनका गुलाम रहेगा। अब जिसने करवाया, ये तो जिसने किया, जिसने करवाया उसके ऊपर कर्म कितना हैवी लगता है। पीछे मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं, तो मेरे पास लोग आते हैं अपना प्रॉब्लम लेकर। एक इंसान मुझे बता रहा है कि मैं जब से पैदा हुआ हूं मेरे शरीर में कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी रहती है। कोई शायद कोई दिन ऐसा मैंने नहीं देखा होगा जब मैंने कोई बीमारी ना झेली हो। और इसके अलावा मैं जहां जाता हूं लोग मेरी एनर्जी से बहुत नेगेटिव फील करते हैं। मुझे हमेशा अपमान मिलता है, गुस्सा आता है लोगों को मेरे ऊपर। मुझे नहीं लगता मैं क्या बुरा करता हूं लोगों का। मैंने उसका जब पास्ट लाइफ देखा तो ये समझ में आया कि वो ये एक तंत्र करवाने वाला था, करता करवाता था, मतलब जैसे दूसरों का पैसा लेके और लोगों के ऊपर तंत्र क्रियाएं करता। तो मुझे पैसा दो मैं ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। अब जो दूसरों का बुरा करता रहा, किसी के ऊपर कोई प्रयोग कर दिया, किसी के ऊपर बीमारी पैदा कर दी, जो बीमारी उसने किसी व्यक्ति पर पैदा करी अंत में वही बीमारी आज उसको लग रही है। उसी ऑर्गन पे हो रही है, उसकी किडनी फेल कर दी, तुम्हारी किडनी फेल हो रही है, उसके लीवर पे मारा, अब तुम्हारा लीवर खराब हो रहा है। सिम एवरी प्रॉब्लम, जो दर्द आपने लोगों को दिया वही दर्द अब आपको मिल रहा है। नाउ बी रेडी फॉर दैट। ये मैं आपके चैनल के थ्रू उन सबको मैं वार्निंग दे रहा हूं, अगर इस प्रकार से कभी किसी के प्रति गलत सोचा, गलत किया या गलत करवाया, यू हैव टू पे द कॉन्सिक्वेंसेस। अपने कर्मों से डरने के बाद करना जो भी बात करना, तो बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, बी रेडी फॉर योर कर्मास। अगर ऐसा आज सुधर सकते हो तो सुधर जाइए। किसी के बारे में भी बुरा सोचना, कर्मों को खराब करना बंद कीजिए, वरना हालत बहुत खराब होने वाली है। मेरा पूरा अनुभव इसके साथ जुड़ा हुआ है। कहानियां तो मैं बहुत सारी बता सकता हूँ लोगों से जुड़ी हुई, पर हमें टॉपिक को आगे लेना है तो हम
2: सर इसमें मलाई अर्को एउटा क्वेश्चन एड के गर्नु मन लाग्यो भने, जब त्यो मान्छेहरूले शरीर छोड्छ, आत्मामा परिणत हुन्छ, जब नराम्रो काम गराउने मान्छे, सपोज कसैले मलाई नराम्रो गरिरहेछ भने, त्यो मान्छेको डेथ पछि त्यो आत्माले चाहिँ केही दुःख भोग्दैन या पछि कर्ममा मात्रै, पछि अर्को लाइफमा मात्रै भोग्छ उसले?
3: नेचुरल डेथ की आपने बात की?
2: नेचुरल डेथै मरे रे त्यो मान्छे जसले मलाई नराम्रो गर्यो, जसले मलाई यस्तो ब्ल्याक म्याजिक गर्यो, त्यो मान्छेले नेचुरल डेथ मर्यो भने उसको आत्मालाई त पनि त पाउँछ होला नि सजाय त।
3: जिस व्यक्तिले ब्ल्याक म्याजिक करवाया उसका क्या हुआ?
2: त्यो आत्मालाई त के हुन्छ होला नि सर?
3: देखो सबसे पहले तो वो इस जीवन में भी कभी सुखी नहीं हो सकता जो करवा रहा है। नेचर उसे छोड़ती नहीं है। हो सकता है तुरंत सजा तो ना मिले, अभी किसी ने बुरा किया और अभी बुरा हो जाए, परमात्मा हर व्यक्ति को सुधरने का एक दो नहीं, कभी कभी 5-7-10 चांस भी देता है, बेस्ड ऑन कि उसके पुण्य कर्म कितने थे। अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा हो और वो एक आध गलती करे तो परमात्मा शायद माफ भी कर देता हो एक आध गलती पर, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार गलती सेम रिपीट करे फिर सजा पक्की है। और सजा भयानक से भयानक होगी अगर गलती बार बार रिपीट करता है। एक टाइम के बाद उसको दूसरों को दुख देने में मजा आने लगता है। देयर आर काइंड ऑफ पीपल जो दूसरों को तकलीफ देके फिर मजा लेते हैं, अब देख ऐसा कर दूंगा,
2: एडिक्शन
3: हो जाता है। और देयर ईगो, इट बिकम्स एन ईगो, अब मैं ये करके दिखाऊंगा,
2: पावर शो करना, एकदम
3: पावर शो करना। तो एक तो उसके अंदर जेलेसी थी, देखो जेलेसी थी तभी उसने किसी के अगेंस्ट कुछ किया। आपने जो बताया कि वो वुडू डोल वाला, अब जिसके मन में इतनी जेलेसी रही होगी तभी तो उसने आपके अगेंस्ट कुछ किया होगा। हर कोई आपके जैसा बन नहीं सकता, लेकिन बनने का प्रयास न करने की बजाय वो आपको गिराने का उपाय सोच रहा है
2: ना,
3: तो आपके शरीर पर तकलीफ भेज रहा है। यकीन मानिए जो तकलीफ उसने आपको दी या किसी भी और व्यक्ति जिस पर वो कोई ब्लैक मैजिक करता है, एक एक प्रॉब्लम उस पर कम से कम 100 टाइम मल्टीप्लाई होकर अप्लाई होगी। ये कर्म का सिद्धांत बड़ा टफ है, बहुत टफ है। हो सकता है तुरंत भी कुछ हो, किसी जीवन में भी कुछ हो, क्योंकि ये लोग सीधी मौत तो नहीं मरेंगे, क्योंकि जिसके थ्रू जो करवा भी रहा है नेगेटिव शक्तियां तो जानती है ना, एग्जैक्टली। तो भले ही वो डायरेक्ट नहीं कह रहा, किसी तांत्रिक के थ्रू करवा, लेकिन ये व्यक्ति जो करवा रहा है गुलाम तो उन्हीं का ही है ना,
2: राइट।
3: तो जो उनको गुलाम बना रहा है वो जानती है उनका इरादा, छोड़ेंगी थोड़ी इसको, इसकी भी वो दुर्गति होगी, वो दुर्गति होगी कि ये लास्ट में उन्हीं का गुलाम बन के अधोगति में, नीचे के लोकों में जाएगा। हो सकता है कि अगर गलती से इस पृथ्वी लोक पर आया, कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का शरीर पाकर आया, क्या पता, इस बात की बहुत संभावना है। पहली बात तो नरकों में कितना भुगतना पड़ेगा, नोबडी नोज, है ना। कुंभी नरक ऐसे ही नहीं बने ना, हमारे में सनातन में प्रावधान तो है कि तुम जितने बुरे कर्म करोगे तुम्हें नरक की आग में सड़ाया जाएगा, जलाया जाएगा, गर्म तेल के कड़ाई में डाला जाएगा। कभी कभी लगता है क्या वो जरूरी नहीं होता होगा, कोई इंसान अगर धरती पर रहकर नहीं सीख पा रहा, आप दूसरों को देखकर जल रहे हो, जो अपने अंदर जेलसी पैदा कर रहे हो, जल रहे हो, वही तो गर्म तेल का कड़ाह और किसे बोलते हैं। मतलब इट इज साइकोलॉजिकली इफ यू सी फील दैट दैट पर्सन इज इनसाइड बर्निंग, ऑलरेडी बर्निंग, हु इज बर्निंग ऑन दिस अर्थ विल बर्न 1000 times more ऑन दैट प्लेनेट ना। जब वो नरक में जाएगा तो हर हजार गुना और जलेगा, वो क्या करेगा वो। तो जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, जो इमोशन है, जो दूसरे को तकलीफ देना चाह रहा है, वो खुद भी तो जलेगा। वो आपको तकलीफ दे सकता है, आपकी बॉडी को तकलीफ दे सकता है, तो मल्टीप्लाई होकर उसको भी तो झेलना पड़ेगा। तो दे शुड बी अफ्रेड ऑफ द पेन दैट दे हैव टू बियर। जो आज किसी को तकलीफ दे रहे हो सकता है दे मे बी एंजॉइंग
2: फॉर
3: शॉर्ट टाइम, पर हिसाब जो होगा तो बहुत ही ज्यादा खराब होगा। एक एक व्यक्ति की जो दुर्गति होगी तो दे शुड फील दैट पेन। इसलिए अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, मतलब मैं एक बार आपकी मैं किसी के साथ भी बुरा हो रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत हुआ है, मेरे ऊपर भी पर्सनली ब्लैक मैजिक बहुत हुआ है, मैंने और लोगों के ऊपर होते हुए भी देखा है। मेरे पास केसेज आते हैं जब मैं हीलिंग करता हूँ, मेरी की हीलिंग करता हूँ, लामा फेरा हीलिंग करता हूँ, जब हम लोगों की नेगेटिविटी निकालने का प्रयास करते हैं, उनके चारों तरफ उनके अंदर से नेगेटिविटी खींचते हैं, सम टाइम द नेगेटिविटी अटैक्स अस, हमारे ऊपर अटैक कर देती है, वो हमें तंग करती है। हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें तो गुलाम बनाकर भेजा गया है, दैट नेगेटिविटी सेज दैट हमें तो कंट्रोल करके गुलाम बना के भेजा गया, जाओ नुकसान पहुंचाओ, बस हमें नहीं पता।
2: मन लागे पनि मन नलागे पनि गर्ने पर्यो,
3: मरना है हमें तो, मारना है आपको, तकलीफ देनी है। खैर गुरु की कृपा है, अगर किसी के साथ ऐसा हो, बार बार अटैक